कुछ लोगों के लिए मुस्तकबिल के बारे में सुनना एक नागुजीर जज्बा है। अफ्रीका के कदीम कबाइल से लेकर आज के जदीद इंसानों तक बहुत से लोग मुस्तकबिल के बारे में मुतजस्सिस हैं और उस पर वक्त और पैसा खर्च करते हैं। मज़ीद ये कि ये जदीद दौर का तजस्सुस नहीं है। नामालूम के बारे में जानने और शायद तकदीर को बदलने के लिए मुस्तकबिल को देखना हमेशा एक तजस्सुस रहा है जो ज़मानों से ताज़ा रहा। कदीम चीन से लेकर मेसोपोटामिया तक, कदीम मिस्र से लेकर रूमी सल्तनत तक हज़ारों जहानों के मराकज़ बनाए गए हैं और पूरे दुनिया में किस्मत कहने के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए गए हैं। आज हम दीदिम के अपोलो मंदिर के बारे में बात करेंगे जो कदीम ज़माने में अनातोलिया में पेशेंगोई के सबसे अहम मराकज़ में से एक था। कदीम ज़माने के बेहतरीन महफूज मंदिरों में शुमार किया जाता है अपोलो का मंदिर। कदीम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पेशेंगोई का भी ये मरकज़ रहा। यह मंदिर आए दिन के दीदम कस्बे में वाक़ है। अपोलो का मंदिर मेरिट का मुकद्दस मकाम भी है जो इओनिया का ताकतवर सदर मकाम था और अहम इनियोनियन शहर जैसे एफेसिस और प्रेन के लिए भी हिकमत का मरकज़ रहा। इसकी तामीर में सैकड़ों साल लगते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। मंदिर इतना बड़ा है कि कदीम ज़माने के मशहूर जुग्राफियादान स्ट्राबोन लिखते हैं कि इसकी जिसामत की वजह से इसका अहाता नहीं किया जा सकता। जंगों राग के नतीजे में तबाह होने वाले मंदिर को सिकंदर आजम बाद में रूमी शहनशाहों ने दोबारा तामीर किया था। यूनानी अफसानों का मारूफ देवता अपोलो आर्ट, मौसीकी और इल्हाम का देवता है। वो मुस्तकबिल को पढ़ने की सलाहियत भी रखता है। अफसाने के मुताबिक अपोलो एक दिन चरवाहे ब्रांखोस से मिलता है और उसे जादू के राज सिखाता है। चरवाहा इस इलाही सलाहियत का बदला देने के लिए अपोलो का पहला मंदिर कायम करता है। चरवाहे ब्रांखोस की औलाद एक तवील अरसे तक अपोलो के मंदिर में पादरी और मुंतजिम रहे थे। कदीम दुनिया का ये हिकमत का मरकज़ वक्त के साथ इतना अहम हो गया था कि बादशाह दूसरी रियासतों के खिलाफ ऐलान जंग करने से पहले और ताजरों के सफ़र से पहले ही मुस्तकबिल के बारे में जानने की कोशिश करने के लिए मंदिर में आते थे। अपोलो से पूछे बगैर कोई भी अहम फैसला करने का नहीं सोचता था। खुदाई के दौरान मिलने वाली पेशेंगोई के मतन के मुताबिक जो लोग ये जानना चाहते थे कि मुस्तकबिल में क्या होगा, पहले एक मखसूस फीस अदा करते थे और जिनकी माली हालत अच्छी थी वो मंदिर के लिए कुर्बानी भी पेश किया करते थे। पेशेंगोई करने से पहले पादरियों ने 3 दिन तक का रोज़ा रखा, अपने आप को मुकद्दस पानी से धोया और उसी तरह कुर्बानी तैयार की। वो शख्स उस सवाल को पहुंचाएगा जिसका जवाब देवता अपोलो ने उसे कागज़ के टुकड़े पर लिख कर दिया था। और एकल मुकद्दस पानी मंदिर के सबसे अहम अंसर को देखकर मुस्तकबिल को देखेगा और मुनासिब वक्त के अख्तिताम पर जवाब देगा। ताहम ज़राए में कहा गया है कि ये एक धोखा है क्योंकि ओरेकल्स कभी भी कतई फैसले नहीं बताते और जो कुछ कहा जाता है उसके मुख्तलिफ माने लिए जा सकते हैं। लोग अब भी ओरेकल्स पर भरोसा करते रहते हैं, मंदिर का दौरा करते हैं और मुस्तकबिल के बारे में सुनते हैं, यहाँ तक कि ईसाइत फैल गई और किस्मत कहने, जादू टोने और पेशेंगोइयाँ गैर कानूनी करार दी गईं। अपोलो का मंदिर एक इंतहाई मुतासिरकुन पनागाह है जिसमें उसके शानदार कॉलम मौजूद हैं जो आज तक जिंदा हैं। अपने वक्त का सबसे बड़ा संगे मरमर का एक टुकड़ा और इसका मुनफरद मंसूबा,